मुहब्बतें और भी बढ़ती है बिछड़ जाने से, मुहब्बतें और भी बढ़ती है बिछड़ जाने से।

0: ना,
1: वाह जी,
0: तेरे जाने से बिखर जाएगी दुनिया मेरी, तेरे जाने से बिखर जाएगी दुनिया मेरी।

एहसास करो ओ मेरी माँ है कंबदी। जद हवा चलेगी ठंडी तन नो चंबदी। एहसास करो ओ मेरी माँ है कंबदी। गोदी

दुख सह लियो सिदक न हारियो मेरे लाला दे नाल रह के रात गुजारियो मैं खड़ा उड़ीका अपने सरदारा नू मैं मिलना चाहुंदा अपने अजीत जुजार नू मैं खड़ा उड़ीका अपने सरदारा नू मैं मिलना चाहुंदा अपने अजीत जुजार नू मैं चारे पुत क्यों वारे जग विचारियो मेरे लाला दे नाल रह के रात गुजारियो मैं चारे पुत क्यों वारे जग

0: चल अड़िया हाथ फड़िया पा तुर चलिए चन दी सैर नू। चल अड़िया हाथ फड़िया पा तुर चलिए चन दी सैर नू।
1: मम्मी मिशेश जी दी रचना चन दी सैर दे नाल ही असी इस काम्य फल दा इथे ही समाप्ति करने आ। ते अगली काम्य फल तक हरवंश सिंह नूं दिओ आग्या। हरवंश सिंह वल्लों एक बार फिर सारे स्रोतियां शायरां नूं आदाब नमस्कार सत श्री अकाल कुदरत खैर करे अलविदा आमीन प्यारे दोस्तों।

0: पैंदी है जी,
1: जी
0: जिन्ना छोटा किसान हैगा या उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट उन्नी वध
1: वध
0: जाती है
1: पैनी है जी,
0: जी।
1: बिल्कुल है।
0: तो इस करके सब तो जिथे मार खांदा हैगा है ना जी, उथे जेड़ा ये है भी गरीब बंदा ही मार खांदा है जी, छोटा
1: जी
0: जिमीदार मार खांदा है, ते उधरों जेड़ा हैगा है छोटा दुकानदार, छोटा बिजनेसमैन, छोटा कोई रिक्शे वाला मजदूर तबका, ये
1: जी
0: मार खांदा है जी।
1: बिल्कुल है जी। एदे विच देखो
0: सरकारां जेड़ियां हैगी,
1: जी, हाँ जी, हाँ जी,
0: सरकारां जेड़ियां या सबसिडी जेड़ियां दिंदियां या दैट इज टू ए मर्सी,
1: जी
0: दैट इज नॉट ए प्रिविलेज, दैट इज
1: जी
0: मर्सी। वो दया आया अगले दी मंच आया तो उन्हें दया कर दी जी, वो
1: जी
0: कोई है नहीं जी। अज अज भी मेरे नाल एक बंदा मेरा जेड़ा हैगा है भाई, मेरे को मुंडा आंदा है खेत के काम कुम करन, वो मैनू
1: जी
0: कहता दोबारा किटा आ गईयां है
1: अच्छा
0: जी,
1: जी
0: वो राशन किटा कितने दोबारा आ गईयां, कहता जी वंडन डई। तो
1: जी
0: मैं क्या फिर तेनू तो मौज लग गई तेनू
1: जी
0: किट नहीं, कहता मेरे आधार कार्ड के उत्ते जेड़ा आ भाई कोई हैगा इसके जी अपडेट रिसीव होया है, तो इस करके मैनू किट नहीं मिली।
1: जी
0: मैं क्या भी जेड़े नीडी बंदे हैगे आ उन्होंने तो तुसी टेक्निकल डिफेक्ट के आधार से जेड़ा आ
1: जी
0: वो तुसी उन्हां नू डिनाई कर रहे हैगे आ जी।
1: जी
0: तो इस करके उथे फिर जेड़ा आ वो मतलब दैट इज मर्सी, जेड़ी मैं गल कही वो तो फिर मर्सी है ना जी, अगले दी
1: जी
0: दया है जे दे देवे ते जी, नहीं तो
1: जी
0: अदरवाइज जे अड़ जाए तो अड़ जाएगा।
1: बिल्कुल है जी। हाँ
0: तो
1: देखो
0: इस करके नीडी बंदे,
1: जी
0: नीडी बंदे जेड़े आ उन्हां दा ध्यान जरूर रखना चाहिए हैगा, जेड़ी खेती की लागत है वो घटनी चाहिए हैगी है
1: चाहिए है
0: जी,
1: जी
0: ते कुछ फसल जेड़ी हैगी है जो आने आ वो इन्ने क वाजिब रेट ते जरूर मिलना चाहिए कि हर के मुंह दे विच पै सके, ते
1: जी
0: हर के बंदा जेड़ा हैगा आप खरीद के रोटी खा सके जी। की
1: वो
0: बारे साहब
1: पैन कित्थे देना सैनी साहब। देखो अज संयुक्त राष्ट्र महासभा दियां मीटिंगां चल रहियां ने, ते अज न्यूयॉर्क दे विच आयोजित प्रोग्राम दे दौरान साडे अपने भारत दे विदेश मंत्री जयशंकर उन्हां ने ये चेतावनी दे दित्ती है कि आने वाले महीने दे विच दुनिया दे उत्ते जिहड़ा भयानक भोजन दा खतरा जिहड़ा संकट मंडराएगा जी, वो लोकां नूं हौसला अफजाई दा की देणी आ, होर डरा डरा मार देना इन्हां ने जी।
0: भाई साहब, ये ना कॉन्सपीरेसी होंगी
1: हाँ
0: है वड्डे
1: बिल्कुल है जी,
0: पद्धर से,
1: बिल्कुल
0: जो
1: है
0: कोई इदा का लीडर गल करता ना जी तो
1: जी,
0: बड़ी वड्डी कॉन्सपीरेसी होंगी है
1: बिल्कुल
0: जी।
1: है जी, बिल्कुल है
0: मैं ना अज तो कई साल पहला ना शरद पवार हुंदा सीगा एग्रीकल्चर मिनिस्टर है
1: जी।
0: जी, उन्हें ना मतलब एक गन्ने दे बारे जेड़ी आ खबर जेड़ी आ वो नेशनल टीवी दे उते एक गल कहती कितने गन्ने दी शॉर्टेज बहुत आ
1: जी
0: इस बार,
1: जी
0: इनी गल कही अगले दिन ही खंड दा रेट जेड़ा आ 7 रुपए वध गया
1: बढ़
0: किलो
1: गया।
0: बगरी है जी। वो बाद विच पता लगा कि गन्ने दी कोई कमी नहीं सी,
1: जी
0: ओदियां अपनियां शुगर मिल हैगियां सीगियां ते उन्हें रेट वधाना सी जी।
1: जी बिल्कुल है जी,
0: बाद दे विच जदों हैगा ये कमाई कर ली 15 क दिन 20 दिन बाद कहता भी जेड़ी आ वो रिपोर्ट जेड़ी आ ठीक नहीं सीगी, गन्ना सफिशियंट हैगा या
1: जी
0: ते मिलां दे विच आ रहा है ते कोई बहुता फिक्र करन दी लोड़ नहीं
1: बिल्कुल
0: है
1: है जी,
0: जी, क्योंकि उदों तक जेड़ा आ प्रधानमंत्री अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह सीगे जी,
1: जी
0: उन्होंने कहा भी जी इन्ना एकदम खंड इनी वधी हैगी है, रेट वधिया हैगा है, जे शॉर्टेज हैगी आ ते ता ही रेट वधे होणगे भी आपां इंपोर्ट कर लेने, वो इंपोर्ट
1: जी
0: दी खबर आई आ ते नाल ही उहने इधर करके ते इधर फिर जिहड़े स्टेटमेंट दे के ते वो
1: बिल्कुल है जी,
0: कंट्रोल कर लईए इत्थे वालीए।
1: जी बिल्कुल है जी। ते सैनी
0: तो
1: साहब हाँ जी, एक तर्हां दी घटना जिहड़ी वापरदी है मुड़ के फिर पंजाब दे विच, उत्थे दुबारा फिर उह तरहां दीआं घटनावां बार बार भी वापरदीआं ने, ते एक तूर बंजारा जिहड़ा होर बन गया, भाणा वापर गया, जबरी पोस्टमार्टम हो गया, जबरी सरकार जिहड़ी है संस्कार करा दिंदी है, तरले पाउंदी मां दी जिहड़ा किसे ने हूक नहीं सुनी है, कनोई दे दलित नौजवान दा पुलिस पैरे हेठ जिहड़ा संस्कार करा दित्ता गया, परिवारक मैंबरां नूं थाणे बंद कर दित्ता गया, की हालात ने जी।
0: पर साहब ये ना सुनाम एरिया की घटना हैगी है जी,
1: जी
0: ते सनी ना दा 23 साल की उम्र का मुंडा सीगा जी,
1: जी
0: उन्हें जिदा पहला होया सी ना जी वो अपना गुलजार वाला
1: हाँ जी, हाँ
0: केस
1: जी
0: जिहदे विच सुसाइड कीती सी, ते
1: जी
0: दोषी जेड़ा आ उन्हें वित्त मंत्री नूं कहा सी
1: नाम
0: ते
1: लिया
0: अपना
1: सी।
0: जेड़ा आ फिर हाँ जी, वो इसे तरीके नाल जेड़ा आ इथे भी ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ

वो फिर नहीं आती। आंख धोखा है, क्या भरोसा है, सुन लो दोस्त, तो चट दोस्ती का दुश्मन है। आंख धोखा है, क्या भरोसा है, सुनो दोस्त।

कली बैठी हमें लेके आसार एक बारी मिल सजना जिंद अपनी मैं दीती है गवा एक बारी मिल सजना झूठ अंग साक सब झूठा संसारे झूठा संसारे रब नू विसार के झूठे नल कीता प्यार वे झूठे नल कीता प्यार वे रहियां खोटियां ते सच्चियां सुना एक बारी मिल सजना जिंद अपनी मैं दीती है गवा एक बारी मिल सजना काल दा निशाना मेरे सिरे उत्ते वजना सिरे उत्ते वजना कड़े है जेड़ा उने एक दिन पजना एक दिन पजना एक बार

0: ਜੀਣਾ ਕੀਤਾ ਬੇਹਾਲ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ। ਹਜੇ ਦਾਸ ਤਾਂ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਨਰਜੀਵਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਗਣ ਲਈ, ਬੇਕਸਮ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਣ ਲਈ ਫਿਰ ਖੰਭ ਤੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਲੱਭੋ ਉਪਾਅ, ਰੋਕੀਏ ਹਿੰਮਤਾਂ ਦਾ ਡੱਕਾ ਲਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
1: ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਖੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੀਆ ਸ਼ਰਮਾ। ਦੀਆ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਮੇਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰੂਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਾਮੇਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੀਆ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ।
2: सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दुआबा रेडियो के कवि दरबार में मैं रमणीक शर्मा अम्बाला शहर से कविता प्रस्तुति के लिए उपस्थित हूँ। दुआबा रेडियो की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे कविता प्रस्तुति का सुअवसर प्रदान किया। माननीय हरबंस सिंह जी को अनेकानेक शुभकामनाएं व धन्यवाद। आसपास घटित होती घटनाओं से मन आहत होता है, लेखनी उठती है तो मन का सारा दर्द कागज पर उंडेल देती है। ऐसे ही भावों को लेकर प्रस्तुत है मेरी कविता माँ की वेदना। तो मेरी कविता आपके सामने, कविता का शीर्षक माँ की वेदना। दर्द में छटपटाहट और आक्रोश से भरा ये मन, आखिर नारी होना जो कभी मेरा अभिमान रहा था, सामाजिक विषमताओं को सह जाने की क्या मजबूरी है जिसको सहन करता है, जिसके चलते कामी लोभी लंपट समाज में गाल बजाते फिरते हैं। आखिर कब तक चलेगा ये सब? छान मारे पुरातन ग्रंथ, खूब ढूंढे सब प्रश्नों के उत्तर, पर पाया क्या? तब तो मैत्रेयी गार्गी अनेकों नारियों को थी सम्मानित व बराबरी का दर्जा हासिल। समय की धूल पड़ते पड़ते कहां गई वह बराबरी, कहां गया वह सम्मान, कहां गई वह इज्जत, गरिमा मान सम्मान। कब पूज्या से भोग्या बन गई पता ही नहीं चला, और अब फैशन की गुड़िया बनाकर रख दिया, ऐसा चरित्र बनाकर परोसा बाजार की आधुनिकता में इन विज्ञापनों फिल्मी पत्रिकाओं ने, कितना दिखाऊ और बदन उघाड़ू हो सके उतना बना दिया जाए। छी, घिन आती है ऐसी कुत्सित सोच से भी। संस्कृति मान मर्यादा तो कब के पीछे छूट गए इस आधुनिकता के बाजार में। सोच से परे हो गया कि उत्थान है या पतन, समानता का जामा पहनाकर शोषण, दोहरा चरित्र है समाज का। बेटियों को जलील होते उनकी अस्मिता पर घात होते देख मन नहीं तड़प जाता तुम्हारा? मां हूं, सोचती हूं कहां छुपा लूं इन नन्ही बेटियों को कि इन दरिंदों कामी लोभी लंपटों की बुरी नजर ना पड़े। मन भर आया, खूब सोचा और देखो शाम तुम याद आए, शाम तुम याद आए। तुम ही करो कुछ कान्हा, सब कुछ वैसा दिखे जैसा पुरातन काल में था, और देखो सुझाया रास्ता उसी परम पिता ने और कहा, तेरे सामने छोड़े सभी विकल्प मेरी बच्ची, मैं चुप। पहेलियां मत बुझाएं सर्वशक्तिमान, मैं परेशान हूं। वो बोले, क्या नहीं दिया मैंने तुम सबको, तुम सब नारियों को, मेधा दी, शक्ति दी, भक्ति दी, बल दिया, विद्या दी, तुम बनो ऐसी कि बुद्धि से पछाड़ दो सबको, तुम बनो ऐसी पहलवान कि देकर धोबी पछाड़, कर दो चारों खाने चित पशुत्व के गुणों वाले नराधमों को। बुद्धि पर पड़े पर्दे छटने लगे। हाँ, शक्ति है हम में, रण हो तो रणचंडी बनकर, गृह हो तो गृह स्वामिनी बनकर, अरे देखो स्वामिनी हूं मैं, स्वामिनी है हम। अपने कर्म के मार्ग को थोड़ा और प्रशस्त करती हूं, अपना सोया ज्ञान शक्ति पहचान कर पूरी शक्ति से जुट जाती हूँ प्राप्य को समेटने में। हाँ, मैं ध्वस्त आत्मविश्वास को पुनः जगाकर समाज को, उनकी ललनाओं को, नाइंसाफियों का डटकर सामना करना, कुसंस्कारों से लड़ना, पूरी शक्ति से जूझना और बुराई पर ना झुकना, कलम पकड़ना, कलम पकड़ने के साथ साथ मजबूती से कलाई को कठोर बनाना सब सिखाऊंगी। निर्बलता छोड़ो मेरी बच्चियों, निर्बलता छोड़ो। नारी हूं, मां हूं ना, दो नहीं चार चार हाथों से आत्मसम्मान व अस्मिता को संभालना सिखाऊंगी। पर फिर भी दर्द से तड़पती हूं, फरेबी नरपिशाचों दुशासनों के अन्याय और घृणित कुकृत्यों पर मैं रुकूंगी नहीं। सब सब सब सिखाऊंगी मैं कि दुर्गा बनकर कैसे अपनी रक्षा की जाती है, अन्नपूर्णा बनकर कैसे भंडारी बना जाता है, कल्पना चावला बनकर कैसे पंख फैलाया जाता है और असीमित अंतरिक्ष को नापा जाता है। सब सब सब कुछ सिखाऊंगी मैं अपनी बच्चियों को, सब कुछ सिखाऊंगी मैं अपनी बच्चियों को।
1: अम्बाला तो बाद हूँ असि थानू फिरोजपुर लेके चलते हैं। फिरोजपुर के साडे शायर रहिंदे ने कमलदास जी। कमलदास जी बड़ी धीमी सुर दे विच रह के अपनी रचना पेश करते ने, स्रोते उन्होंने प्यार भी देंदे ने, ते इस बार फिर वो साडे सदे दे उत्ते हाजिर हो रहे ने। आस करते हैं पहला वांग ही उन्होंने स्रोते साडे प्यार देंगे। कमलदास शर्मा जी, थोड़ा दुआबा रेडियो दे मंच ते निघा स्वागत है जी।
3: लिखे है मन ने बड़े यतन से, तेरी महिमा में कुछ नगमे। लिखे है मन ने बड़े यतन से, तेरी महिमा में कुछ नगमे।

कहता हूँ, लिखे है मन ने बड़े यतन से, तेरी महिमा में कुछ नगमे सुने तुमने भी इस मन से, जो तुमने ही लिखाए हैं, लिखे है मन ने। पहाड़ों से निकल कर जल नदी कहती, मेरे संग चल, चले हैं सब,

है, लिखे जो मन ने बड़े यतन से, तेरी महिमा में कुछ नगमे सुने तुमने भी इस मन से, जो तुमने ही लिखाए हैं, लिखे जो मन ने ये हरियाली

लुक लुक के सौदे करना है, लुक लुक के सौदे करना है, बिन मेहनत बोझे पर दाए, लुक लुक के सौदे।

जड़ तो पुटते पिछे कौड़ी पजदा फिरदा पता न कोई पलदा ए जदो समय दा चक्कर चलदा ए जदो समय दा चक्कर चलदा ए लेखा लिखिया मेट न सकदा हो लेखा लिखिया मेट न सकदा।

तख्त हिजरे दा हलदा ए, जदों समें दा चक्कर चलदा ए, जदों समें दा चक्कर चलदा ए।